साच और पोत आपन संग्रह ताकि गतमित कहीं न जाए दूसर हो तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जान है ते सदा सुख होए आम लाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पतवंत जीवन मुक्त सदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद से जगत राया जन अमन का ए स्वाहो जन के संचित आवे ना हो आ मुकत मुकत करा संसार नानक तिचन को सदा नमस्कार शोक पूरा प्रभा राध्या पूरा जग नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपति पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे एक साथ सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आसन त्यागे हो तरंग संजना की तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर तरो हर तन के पर ले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग पज परमानंद नट निवारो धारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित्व नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम स्रोत साथ के बचन अमली कलार ए रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरैलो के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जा जा शब्द अनाद वाजय सुन सुन अनद करे प्रभ गाजय प्रगड़े गोपाल महंत कह माथे नानक उधरे तिन कैसा थे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए प्यार पे सबरेन अमृत नाम सा संगलैन सुप्रसन्न पे गुरुदेव पूरन हुई सेवक की सेव आल जंजाल बिखारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक ने भी खेप मारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर ची सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसा सुहोत निदान सर्व इच्छा था कि पूरन होए प्रदान प्रगट सब लोए सावते उच पाए स्थान बहुना होवे आवन जान हर तन खार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रित नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कह मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन को ए सब जुग मेहता की गत हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मंतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटै संकीर पाते जमते छुटै जाके मस्तक कर्म प्रपाए सासरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लय प्रीत तिस जन आवे हर प्रचीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी तिथि गोड़ी महला पंजा श्लोक के ओंकार सतगुर प्रसाद जल तल में येल पूरिया स्वामी सृजनहार अनेक पांथ हो पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एकम एक अंकार प्रभ को करो वंदना त्याय गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण प्रयो हराए ताकि आस कल्याण सुख जाते सबका छोए चार कुण दै जिस प्रमियो तिस दिन अवर न कोय वेद प्राण से मृत सुने बोवित करो विचार पति सुधारण पै हरण सुख सागर निरंकार दाता भुक्ता देन हार तिस बिन अवर न जाए जो चाहे सो ही मिलाए नानक हर गुण गाए गोविंद जस का ये हर नीत मिल भजिया साध संग मेरे मीत राहो श्लोक करो वंदना निकवार सन प्रहर राय प्रम कटिया नानक साध संग द्वितीया पाव मिटाए पोड़ी द्वितीया दुर मधुर कर गुर सेवा कर नीत राम रतन मंतन बसै तज काम करो लोमीत मरण मिटे जीवन मिले बिन सैल रगल क्लेश आत जो गोविंद बजो पाव भगत परवेश ला मिले तो टाहिर हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवे सात सा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म से चीत श्लोक तीन व्यापे जगत को तुरिया पावे कोए नानक संत निर्मल पे जिन मन वस्या सोए पोड़ी तृतीया त्रागुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुरंग प्रम त्यो कणो सदा संगारे मीच हर सोग सहसा संसार हो करत बिहाये जिनकी है तसे न जानी चितवे अनेक उपाय आद व्याद बे उपाद रस कभु न टूटे पाप टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी न बुझे प्रताप मोह परम बुद्धत कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख लो नानक तेरी आस श्लोक चतुर सियाणा सुगर सोए जिन तजा अभिमान चार पदार्थ अस्थिर भज नानक कर नाम पौड़ी चतुर चारे वेद सुन सोदियो तत विचार सर्व खेल खेम कल्याण निध राम नाम जप सार नट निवार दुख हर टूटे अनेक क्लेश मी छुटे जमते छुटे हर कीर्तन प्रवेश
पोबिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारिद अपवित्रता नासे नाम आधार सुंदर मुंजन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल श्लोक पंच विकार मन मह बसे राचे माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्राप्त कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जय माने हो पर पंच कुसम बास बो रंकणो सब मिथ्या बल बंच न जापे न बूझिए न खच कत विचार स्वाद मोहरस बेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बो जोन प्रमण कीने कर्मानेक रचनहार न सिमरियो मन विचार विवेक पाप भगत भगवान संग माया लित नरंच नानक बिरले पाई है जो न रहे पर पंच श्लोक खर शास्त्र उचो कहे अंत न पारावार भगत सोहेत गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पोड़ी खस्तम खटसास्तर कहे सिमरत कथे अनेक उत्तम ऊंचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गिदे हर्ष्यो बिदे भक्त रचे भगवंत मोह मान प्रम बिंस्यो पाई सरन दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल ला मिला तो टाहिर साध संग लिवलाए खाट खजाना गुण निधरे नानक नाम त्याए श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतो किए एक सो लिवलाए पोड़ी सत सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार आप तो जो गोविंद पजो सन परो हर राय दुख हरे पर जल तरह मन चिंदिया फल पाए आठ पैर मन हर जपै सफल जन्म प्रवाण अंतर बाहर सदा संग करने हर पछाण सो जा साजन सो सका मीत जो हर कीमत दे नानक तिस बले हारणे हर नाम जपे श्लोक आठ पैर गुण गाइये तजिए अवर जंजाल जम कंकर जो न सके नानक प्रभु दयाल पोड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रकाश सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल तरम पवित्र स्नान सब में ऊंच विशेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिये नानक नाम हर रंग श्लोक नारायण न सिमरियो मोहे स्वाद विकार नानक नाम बिसारे नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे छिद्र अपवीत हर नाम न जपे करत विपरीत पर त्रे रमे बके साध निंद करण सुनी हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उर्दर कहताई अगन निवरे तिसना न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिस्तृत मर जमे अपागे श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जद देखियो तसोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोक नाम जपली ने करनी सुनिए जस गोपाल नैनी पेखस साथ दयाल रसना गुण गावे बेअंत मन में चितवे पूर्ण भगवंत हस चरण संत टहल कमाइए नानक यो संजम प्रभ कृपा पाइये श्लोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोविंद न जानी है नानक सब समाध पोड़ी एकादशी निकट पेको हर राम इंद्री बसकर सुनो हर राम हर नाम मन संतोख सब जी दिया इन विद वर्त संपूर्ण पया तावत मन राखे इकठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाए सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एओ तरम श्लोक दुर्मत हरि सेवा करी पेटे साथ कृपाल नानक प्रभ से मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पोड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भक्त करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मंत्र तासे कीर्तन प्रवरंग कोमल बाणी सबको संतोख है पंच पू आत्मा हर नाम रसपोख है गुरपुरे ते एने चौपाइये नानक राम रमत फिर जो न आइये श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूर्ण होत ना काम पति धारण मन बसै नानक छुटै नाम पौड़ी त्रोदसी तीन ताप संसार आवा जात न रख अवतार हर हर भजन न मन में आयो सुख सागर प्रभ निमग न गायो हर शोक का देह कर बाध्यो धीरव रोग माया असाध्यो दिने बेकार करत श्रम पायो नैनी नीच सुपन भरड़ायो हर बिसरत होवते हाल शरण नानक पुर प्रभ पुरख दयाल श्लोक चार कुंट चौधे पवन सगल होते हाल शरण नानक प्रभ पुरख चार कुंट चौधे पवन सगल व्यापत राम नानक ऊन देखिया पूर्णता के काम पौड़ी चौदह चार कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरण आकाश समय प्रपेख जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर
तै बसे ध्यान सुखम अस्तूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोबिंद संत प्रसादी पह मिटे नानक बिनसी चिंद पोड़ी अमावस आत्म सुखी पे संतोख दिया गुरुदेव मंत्र सीता सात सहज लागा प्रभ की सेव टूटे बंधन भो विकार सफल पूर्णता के काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम शरण गई पार ब्रह्म की मिट्या आवागमन आप तेरा कुटुंब सियो गुण गोविंद प्रवरवन हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम गुरपुरे थे पाया नानक सुख विश्राम श्लोक पूरन कबन ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत न काट पौड़ी पूर्णमा पूरन प्रभ एक करण करण करण करण सम्राथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जाका हथ गुण निदान गोविंद गुर किया जाका होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वर सब जानन हार संत साई सरण जोग आठ पैर नमस्कार अकथ कथा न बूझिए सिमरो हर के चरण पति धारा नाथ नाथ नानक प्रभ की शरण श्लोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गई हराए मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाये पोड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार किलबे काटे होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हल्त पल्त मुख उजला न पोए तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन पजिया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद बैस उदरे सिमर चंडाल जिन जानो प्रभ आपना नानक तिसे रवाल गोड़ी की वार महल्ला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महल्ला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसने समत सब कोए एक दृष्ट कर देख दा मन पावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नाना कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोए महल्ला चौथा हो मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार ला हर तन खटिया गुरमुख सब विचार हो मैं मैल बिक उतर है हर अमृत हर उतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजन हार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच्चा है सच सच्चा गोसाई तू दिनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिर्फ सवाले स्वरूप है जिन कीती तिस पार लगाई गुरमुखा नो फल पायदा सच नाम समाई वडे मेरे साहेबा वडी तेरी वडियाई श्लोक महला चौथा विण नावे होर सलाना सब बोलन फिक्का साध मनो कंकार सलाह दे हो मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरे खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उभरे जब हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरि नानक नाम पवित्र हर मुख बोली सब दुख पर हरि पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हराया जिनी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तू जे वरदाता तू है निरंजना तू है सच मेरा मन पाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सचनाया शोक महला चौथा मन अंतर हो में रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक राग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मन तन रत्ता रंग स्यो गुरमुख हर गुणतास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसा बास पोड़ी तू करता पुरख गम है किसना तू बढ़िया तू जे वढ़ोए सो आखिया है तू जे हा तू है पढ़िया तू कट कट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़िया है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़िया तू करे सो सच्चे होए सी ता काए तकड़िया है श्लोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पैर लगन जन नानक कृपा तार प्रा सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत परम की जो बोलन तिवे सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत परन पौड़ी तू करता आप पुल है पुलन विच नाही तू करे सो सच्चे पला है गुर शब्द बुझाई तू करण कारण समर्थ है तू जाको नाही तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जीत तेरे तू सब सदा तू सब चढ़ाई श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठ है सज्जन मेलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा सतगुर दाता ध्यान है जिसनो दया सदा होए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विट्टो तिस्टिया ना खोए सतगुर सबना दा भला मनाए दा तिसदा बुरा क्यों होए सतगुर नु जे आको इच्छदा ते हा फल पाए कोए नानक करता सब किछ जानदा जिद्दू किछ गुज्जा ना होए पौड़ी
जिसनो साहेब वड्डा करे सोई वड़ जानी, जिस साहे पावे तिस बख्श ले सो साहे मन पाणी, जे को रीस करे सो मूड जानी, जिसनो सतगुर मिले सो गुण रवे गुण आख वखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निरप्यो निर्वय निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लथा हो मैं पार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट विट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखण हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सृजन हार। महला चौथा, आपे धरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंतु पाइन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याए तू सब किलवे कट्टे तास पोड़ी, तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चे पावे, जो तो सच सलाह दे तिन चम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कुड़ी हार पिछा सटियान कुड़ी हृदय कपट महा दुख पावे, मुँह काले कुड़ी आरिया कुड़ी हार कुड़ो हो जावे। श्लोक महला चौथा, सतगुर धरती धर्म है तिस विजया को बीजे ते हा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, उना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सची पहनाए, एक ना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जया बीजे ते हा फल खाए, जा सतगुर सराफ नजर कर देखे सुहाव गिर सब उगड़ आए, ओ जया चितवे नित ते हा पायन ओ ते हो जे ते वजाए, नानक धोई सिरे खसम आपे वरते नित कर देखे चल सबाए। महला चौथा, एक मन एक वर्तदा जद लगे सो थाए पाए, कोई गल्ला करे कनेरिया जे करवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे अंकार न विचो जाए, अंकारिया नो दुख भुख है हथे कर मंगाए, कूठ गीत गुची ना रहे मुलम्मा पाजला जाए, जिस होवे पूरब लिखिया ते सतगुर मिले प्रभ आए, जो लोहा पारस पेटिए मिल संग स्वर्ण हो जाए, जन नानक के प्रभ तू तणी जो पावे तिवे चलाए पोड़ी, जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए, गुण की साज तिन स्यो करी सब अवगण शब्द जलाए, ओगण विकण पलरी जिस देश सच्चे पाए, बलिहारी गुर अपने जिन ओगण मेट गुण प्रगटी आए, वड़ी वडे आई वडे की गुरमुखा लाए। श्लोक महला चौथा, सतगुरु च वड़ी वडे आई जो अंदिन हर नाम त्यावे, हर नाम रमत सुसंजम हर नाम ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दिबाण हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार देवावे, फिर ओ वेला ओ साथ न आवे, ओ अपना बीजा आपे खावे, नरक कोर मो काले खड़िया जो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरह जा हर नाम त्यावे, हर बाता आख सुनाए नानक हर हर करते वे पावे। महला चौथा, पूरे गुर का हुक्म न मन्ने ओ मनमुख ज्ञान मुठा बिख माया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अणहोदे झगड़े दए उस दे गल पाया, ओ गल फरोसी करे बो तेरी उस द बोलिया किसा ना पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए से ओलिप्त वरते उस दा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो भला नहीं पंचो उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आख सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पोड़ी, सच सच्चा सबदू वड़ा है सो ले जे सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याय दा सच सच्चा सतगुर इके, सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत की ते बस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मुँह फिके, ओ बोले किसे न पावनी मुँह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ का सब खेत है हर आप कृष्ण ही लाया, गुरमुख बख्श जमाइयन मन मुखी मूल गवाया, सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा कृष्णित कुरकदा हर करते मार कढाया, कृषाणी जम्मी पाव कर हर बोहल बक्स जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिस सतगुर पुरख थ्याया, जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत तराया। महला चौथा,
सारा दिन लालच अट्या मन मुख हो रे गला राती उगे दबिया नवे सोत सब टिल्ला मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवे पल्ला जोरा दा आख्या पुरख माव दे से अपवित अमेद खल्ला काम व्यापक सुध नर से जोरा पुचल्ला सतगुर के आखे जो चले सो सतपुरख पल पल्ला जोरा पुरख सब आपो पायन हर खेल सब खिल्ला सब तेरी बंत बनावणी नानक पल पल्ला पौड़ी तू वे परवाह थाव है अतुल के अतुलिये सेवड़ पागी जे तुद त्याय दे जिन सतगुर मिलिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिए सतगुर की रीसे होर कच्छ बिच बोल दे से कुड़ियार कुड़े चढ़ पड़ी है ओना अंदर होर मुख होर है बिख माया नो चख मर दे कड़ी है श्लोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन सोए सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार चोट ओए आपे सच्चे वख कट जजमा ले सचियार सिख बै सतगुर पास कालन सतगुर सचियार सिख बै सतगुर पास कालन कुड़ियार न लभनी किथे थाए पाले जिना सतगुर का आख्या सुखावे नाई तिना ओ पलेरे फिरे दई गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचरक वे राइयन मन मुख बेताले सतगुरु नु मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरते अपनी वतना ले जन नानक इकना गुर मेल सुख देवे एक आपे वख कड्डे ठगवा लै महला चौथा जिना अंदर नाम निधान तिनके काज दया दे रास तिन चुकी मोताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख रहे साबास सा पासा सब हरखा किया सब जन को आद करे रह रास गुरपुरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपुरे दान दिया हरने चल नित बक्से चढ़े सवाया कोई निंदक वड्याई देख न सके सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड्डा ता दाणा तू जेवड़ मैं होर को दिस न आवी तू है सुगड़ मेरे मन पाणा मोह कुटुंब दिस आवदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होर चित लाए दे से कुड़ियार कुड़ा तिन माणा नानक सच तय तू बिन सच्चे पच पच मुए अजाणा श्लोक महला चौथा अगो दे सत पाव न दिच्चे पिछो दे आख्या कम न आवे अद विच फिरे मन मुख विचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अप्यो पीवे शब्द गुर केरा सब काला देसा परम चुकावे सदा आनंद रहे दिन राती जन नानक अंदिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख काए सो पलके उठर नाम त्यावे उदम करे पलके परबाती स्नान करे अमृत सरनावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब के लिए पाप दोख ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बैद्या उठद्या हर नाम त्यावे जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुर से गुरु मन पावे जिसने उदयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर से गुरु उपदेश सुनावे जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर से की जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तू सच त्याय दे से विरले थोड़े जो मन चित कराद दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े तुदनो सब त्याय दी से थाए पे जो साहेब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खादे पहन दे से मुहे मर जमे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कड्ढे मुख कोले मन खोटे दे विछोड़े श्लोक महला चौथा मल जुई परिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख है नो पाया पास न दे कोई बहन जगत में घू पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजिया उथे भी मुँह काला धो मुखा दा कराया तड़ सुनिया सबद जगत विच पाई वे मुख सुने नफरे पोली पौधी फावा होए के उठकर आया अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया हलत पलत दो वेगे नित पुखा कुके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बै आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचे मार पचाया ए अखर तिन आख्या जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहेब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कितों रज खाए जे साहेब के करवत होवे सो नफरे हथ आवे अणहोदी कितों पाए
जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगिया सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगा ना कोई पौड़ी नानक विचारे संत जान चरवा।

प्रसाद। सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन अर्गम अगम अपार सब त्यावै तुद जी हर

लेहु उबारी सर बठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को

या है सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निगणना तन नर के रह अयोया की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सतरह सहस पणिजा अर्ध सहसमुन तीन गहजा भाद्र सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपज्ञाने

मान क्रम बचन विचार चौपाई मैं नागनेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन गबू नै त्याऊ कान सुने पहचान न तिन साऊ

फल विजतन वस्तु पयो सासंतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जेको खावे जेको पुंछाए तिसका हुए उधारो ये वस्त जी नह जाई नित नित राघुर धारो तम संसार चरण लग तरियाए सबना

अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया, मेरे सतगुरु महाराज जी का आद अंत नहीं आता, बेअंत उस गुरु की पावन वारगा विच जुड़ बैठे हो। गुरु के कीर्तनिया पासों अमृत बाणी का कीर्तन सरवण करके आनंद प्राप्त किया है। गुरु की अपार बख्शिश है, लड़ीवार गुरु शब्द नाल गुरु खालसा जी रोजाना सांझ बनती है। आओ सतगुरु जी की अमृत बाणी नाल सांझ करिए, जरूर रसना पवित्र।

प्रगट पही सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सतगुर सचे पातशाह धन गुरु नानक साहब का पहरा वे कल युग दे अंदर सत युग तै मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो अगर सैन को राज अब है भगते जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमाए। आप सारे रब वर्गियां संगतां जुड़ियां बैठे गुरु दरबार विच गुरु चरणां नाल मन जोड़ के सतसंगत विचों अमोलक दातां दी प्राप्ति हुंदी है। सतसंगत दे विच पता नहीं केड़ी रूह केड़ा जीव गुरु दा प्यारा जुड़िया होया बैठा उहदे सदके साडे सारयां दी झोली खैर पै जाणी है। गज के आखो श्री वाह। महापुरश धन बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरां वाले बचन करिया करदे सन कि भाई गुरु नानक दी उस्तत करिया करो, जे निंदा चुगली ते भी मन करे ते अपनी कर लिया करो, ते उस्तत गुरु नानक दी करेगा, गुरु नानक नूं वड्डा वड्डा करके वड्याएगा, गुरु नानक तैनूं भी वड्डा बना देगा। आखो श्री वाह। प्यारी सात संगत, मैनूं इक बचन याद आया, महापुरश किवें जोड़दे हन जीवां नूं गुरु नानक दे चरणां नाल। साढ़े बजुर्ग भी विच शामिल सन, अमृत वेले दा टाइम सी ते कलेरां वाले महापुरश बाबा ईश्वर सिंह जी खड़े सन। किसी ने बेनती की, किसी गुरमुख प्यारे ने, सूझवान सियाना बंदा सी, सोझी वाला सी, कहन लगा महाराज कि पंचम पातशाह ने एक बचन लिखिया सुखमनी साहब दे विच, बड़ा कठिन है। महापुरश कहन लगे केड़ा भाई? कहन लगे जी मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल सृष्ट साजना। महाराज बड़ी औखी घाटी है सारे संसार नूं सज्जन बनाउणा। बाबा जी मुस्करा के कहन लगे भाई सज्जना बड़ा सौखा कम है। आ देखो महापुरशां दी जुगती संगत विच आईए, महापुरशां दी संगत करिए ते की प्राप्त हुंदा, केड़ी जुगती प्राप्त हुंदी है। अज पल्ले बन के लै जायो, बड़ी प्यारी जुगती है। महाराज कहन लगे भाई बड़ी सौखी गल। महाराज वो किवें? कहन लगे गुरु दी बाणी दे वचन पढ़िया कर। कहन लगे एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बाद, तू गुरु नानक नूं सज्जन बना ला, तू गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द नाल प्यार पा ला, सारा संसार तेरे नाल सज्जनदाई पा लेगा। गज के आखो श्री वाह। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हम को बने आई। ये दात कितों प्राप्त होनी है? धन गुरु ग्रंथ साहब विच। बाबा जी वचन करिया करते सन भाई गुरुआ दा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जेड़े सारे संसार दी पालना करते हैं। दसा गुरुआ ने मथा टेकिया गुरु ग्रंथ साहब नूं, गुरुआ दे गुरु ताईं आख्या जांदा है। तो प्यारी सात संगत, धन गुरु नानक पातशाह ने जदों सज्जन ठग नूं तारिया, इतिहास बड़ा लंबा रोज सुनते हो तुसीं, बड़े सूझवान गुरु ज्ञानी इत्थे आउंदे हन, ते मैं महापुरशां दे रसना तों इक बचन सुनिया। कहन लगे जदों धन गुरु नानक पातशाह सज्जन ठग नूं तार के बाहर निकले ना, ते मरदाना जी ने अगे होके मत्था टेक के आख्या महाराज एक मेरी भी बेनती है। मरदानिया तैनू क्यों शंका होई, दस की चाहना है? कहन लगे बाबा जी एक बार अपने मुखार बिंद तो कह दियो, जा मरदानिया तैनू भी बख्शिया। सात संगत तुसीं भी आखो श्री वाह। बाबा जी कहन लगे मरदानिया तू सदा साडे नाल रहना, गुरु का जस करना, अकाल पुरख की उस्तत करदा है, तैनू क्यों शंका? ना बाबा जी तको ना, मेरे अंदर किन्ने कौगन भरे पे, डाढ़ा गुनाहगार हाँ, एक बार कह दियो अपनी रसना तो, जा मरदानिया तैनू बख्शिया। ते बाबा जी ने अगो पता की जवाब दिता, कहन लगे अच्छा मरदानिया अज तू अपने औगना ते झात मारी है ना, जा तैनू बख्शिया, तेरी एक ही कुला बख्शिया। फिर आखो एक श्री वाह। सत सहुरियां दियां सत नानक दियां सत दादकियां दियां तेरी एक ही कुला बख्शिया। ते बाबा जी समत दिया करते सन भाई गुरु नानक दे दर ते आके मन करके तन करके ढह के जोदड़ी करिया करो सच्चे पातशाह साडे गुनाह बख्श लो। सो प्यारी सत संगत, दास नूं
एक महीने दे लगभग आप दे चरणा च सेवा करदिया हो गया, दो दिन होर बाकी हैं तुहाडे चरण तोड़ लेनी है, असीस बख्शो, अरदास करो, सतगुर सच्चे पातशाह मेहर भरिया असीस ते हथ रख के सेवा लेंदे रहन। आओ पंक्तियां पढ़ के एक शब्द 5 मिनट का होर पढ़ के समाप्ति करांगे।

परोपकारी पूर्ण कल दिन तारी जो सतगुरु जी साढ़े ते हर पल हल स्वास नाल साढ़े ते कृपा कर रहे हैं, सानू अमोलक मनुखा जीवन बख्शिया है, संसार दियां सारियां दातां बख्शियां हैं, ये साढ़े ते सतगुरु जी दे परोपकार हैं। सो सतगुरु जी दे चरणा च नेता प्रति अरदास करिए पातशाह, जिथे आप जी ने अमोलक जीवन ये सारियां दातां बख्शियां हैं उत्थे आप जी कृपा करके नाम दियां दातां बख्शो, साड़ी चोली विच बंदगी दी दात पाओ तां जो साड़ा जीवन सफल हो सके। सो महापुरखां दी याद विच अखंड पाठ साहिब आरंभ हुए हैं और जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा है श्रद्धा भावना के नाल महापुरखों की यादा जुड़े हैं। सो महापुरख भी जिवें

मंद सहज सुलो नड़ियक प्रेम विनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राति राम प्रभ प्रेम राति हर विनंती नाम हर कै सुख वसै तो गुण बचन ता प्रभ जन गुण वस अवगुण नसै तुत बाधक दिल रह न साका कहन सुन ना तीजे

नाम वर्णन जड़या रस मोल अपार राम मोल मोल सकर टोलो प्रभावेता मंद पली एक संग हर क्या करा रलिया हो पुकारी दर खली करण कारण समरस श्री तर आप कार सारे नानक नजरी तन सुहागण सबद अब सा तारे हम कर साचा सोहरड़ा प्रपाड़ अमिता राम राव रंग रचड़े अमन।

नाम अंधनराता मानस वैरागे सुन मंडल कर पाया आदि पुरखया परम पर प्यारा सदगुरु लख लखाया आसन बैसन थे नारायण तित मन राता विचारे नानक नाम रत बैरागे अनद रुंचनकारे तित अगम तित अगम पुर कौखत जाइय राम सच संजम सार गुणा गुर शब्द कमाइय राम सच शब्द कमाइय निर्खर जाइय पाइय गुण निदाना ते साखा मूल पत नाय डाले सिर सवना प्रदाना जब तब कर कर संजम साखी अठ निगरह नहीं पाइये नानी सहज मिले जगदीवन सदगुरु भुज बजाय गुर सागरो रतनागर तित रतन कनेरे राम कर मंजनो सबत सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नाय जा प्रपाय मिल पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिख्या तज सच नाम उतारे हमे लोभ लै हर लाभ थाके पाए दीन दयाला नान गुरु समान तीर्थ ने कोई सच है गुरु गोबाला हों बन बनो देख रही तृण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझे किया सब जगत सुभाया राम तेरा सब किया तू तिरथिया तुझ समाना समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन के सलाही अणम ज्ञान दान दिजे दाते तेरी भगत परे भंडारा राम नाम बिन मुक्त न होए नानक है विचारा समहला पहला मेरा मनो मेरा मन रता राम प्यारे राम सच साहिब वाद पुरख अपर रम पर उतारे राम अगम गोचर अपर अपारा अपार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है पियो सी अवर झूठा सब मानो करम धर्म के साथ न जाने सुरत मुखत क्यों पाइये नान

पाई सत चतराई संगन संभ नारे सायर के पुत्रे पर हत्या के चरण तल विचारे आदि पुरुष के चल दिखाया जय देखा चय सोई नानक हर के भक्त न छोटो सहज होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साय समाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करणी सारे धार सच सुचारो आमण जावन ठाकर हाय गुरु तत् विचारो साजन मीत सो जान सका तू सच मिलै वडियाई नानक नाम रतन बरगासिया असी गुरमत पाई सच अंजन अंजन सानर।

जन राता राम मान तन राबरिया जग जीवन दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मै लाया सा सभा संता के संगत नजर प्रभु सुख पाया हर के भगत रतब रागे चुके मोदा प्यासा नानक मैं मार पतिने बिरले दास दासा रागा समहला पहला चंत कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तू सबने थाई जिते हो जाई साचा सृजन हार दियो सबने कर दाता करम विधाता दुख विसारण हार दियो दुख विसारण हार स्वामी की तदा का होवे कोट कोटंतर पापा करे एक कड़ी में कोवे हंस से हंसा भग से भगा कर कर करे विचार दियो तू सबने थाई जिते हो जाई साचा सृजन हार दियो जिन एक मन ते आयातन सुख पाया ते बिरले संसार दियो तेने जम नेड़न आवे गुर शब्द कमावे कब न आवे हार दियो ते कब है न हारे हर हर गुण सारे तेने जम नेड़न आवे जमण

संसार दियो झंझक तो पाया तंदे लाया तसे विठो कुर्बान दियो ताकि सेव करी दे लाहा ली दे हर दरगाह पाइये मान दियो हर दरगाह मान सोई जन पावे जो नर एक बछाने ओ नाव निज पावे गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आग बखाने ऐनस नाम से सेका लीजे हरि उत्तम बुर्ग वरदान दियो जन जग तो पाया तंदे लाया हो तसे विठो कुर्बान दियो नाम लैन से सोह है तेन सुख पल होव है मन से जन जाहे दियो तेन पल टोटने आवे जंत पावे से तेन फल टोटने आवे जंत पावे जे जुग के ते जाहे दियो जे जुग के ते जाहे स्वामी तेन फल टोटने आवे तेन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम ते आवे हर हर करह से सुख है नाही नानक पीर न खाहे दियो नाम लेन से सोह है तिन सुख पल होव है मन सृजन जाए है दियो एकों कर सतगुरु प्रसाद आसा महला पहला छंद कर तीजा।

राम मैं गुर पुछया अपना सचा बेचारी राम विचार सतगुर मुझे पुछया भवर बेली रातो सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल तामन तात्यो जम मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेतालिया सच कहे नानक चेत रे मन मरे भवरा कालिया मेरे जी अड़िया पर देसी आगत भवा है जंजाले जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की साचा साहिब मन वसै की फसै जमजाले राम मछली बेचुने नैन रुने जाल बदक पाया संसार माया मोह मिठा अंत परम चुकाया भगत कर जित लाए हरसों छोड़ मनो अंदेसिया सच कहे नानक चेतरे मन जी अड़िया पर देसिया नदियां वा विचुन्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विच परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सत गुरु जन चेतिया प्रणाम हर के परम फूले पचे मुगदया चेतिया हर नाम भगत नारद साचा से अंत ताई रुनिया सच कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी विचुनिया एक अंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला तीजा चंद कर पहला हम करे साचा सोहेला सच सब सुहाया राम तन बिर मेल पया प्रभाव मिलाया राम प्राम आप मिलाया सच मन वसाया कामन सजे माती गुरु शब्द स्वीकारी सच सुवारी सदारा वे रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कौ नान गुरु शब्द सुवारी सफल जन्म सुभाया दू जड़ा है पा कामण परम भोली हर वर न पाए राम कामण गुण नाई बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मन के आने

अंतर शब्द मिले सहजय तबत बजाई राम शब्द शब्द बजाई अंतर शांत आई सहजय आराख्या मेरे प्रीतम अपने सुधा रंग माण सच शब्द सुभाख्या पड़ पंडित मुनि थाके पेखे मुक्त न भाई।

गुरमुख निमाना हो हो अंतर ज्ञान हो बुद्ध है हो बुद्ध है सच शब्द मलख हो हो निमाना सतगुरु अगे मत किस आप लिखा वह

सागर प्रगट होए सागर आप सवारे से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दड़िया दुतिया भाव चुकाया यो कहे नानक तन सो वेला जित मैं सतगुरु मिलया सो सोच ते आया एक जंत परम भुले तिन सहया भुलाए दूजे पाए फिरे हमें कर्म कमाए तिन सहया भुलाए कुमार्ग पाए तिनका किस न वसाही तिनके गाते अवगत तू है जाने जिन रचन रचाए हुकम तेरा खरा पारा गुरु किसे बजाए यो कहे नानक आए जंत विचारे जान

ज्यों रंकुशम लिखाया खिन पूरब खिन पच्छम चाय ज्यों चक कुमार पवाया दुख खावै दुख संचै भोगै दुख नकी बिरद वधाई नानक विखम सोहेला तरिया जा आवै गुरसरण आई मेरा ठाकुरो ठाकुरनी का गमाता राम हर पूंजी हर पूंजी।

चेंज कर दी है। ए ओरेंज ओरेंज वाली जगह ते रेड ला दें, वो ला के तो उत्थे मेन लिख दें। नहीं नहीं रेड वाली जिहड़ी है ना वायर उन्हों उत्थों उतार के ओरेंज जिथे लगी उत्थे ला दें, तो वह मेन हो जाएगा ना, फिर उत्थे मेन लिख देंगे। नहीं क्यों रेड वाली इन रेड इनों ही मेन जिहड़ी ए वाली वायर है ना इनू ला के उत्थे ला देना।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

प्रभु कै सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो भला, प्रभु कै सिमरन सफल फला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उदरा मुचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझा, प्रभु कै सिमरन सब के सुझा, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तन मनते, प्रभु को सिमरे से पत बनते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा बिनासी, सिमरनते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तन सद बलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बेहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबूना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन कहो प्रभ मया, नानक तिंजन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरनी चौंकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कटकट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभसात, अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय, जय महाप्यान दूत जम दला, तह केवल नाम संग तेरा चल्ला, जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरा, हर को नाम कोट पाप पर हरा, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद न फरा, हर का नाम जपत न सुतरा, अनक माया रंग तिखना बुझावे।

ప్రసాద్ గురుదేవ్ అష్టపది జయప్రసాద్ క్షత్రియ అమృత కాహే దుష్ ఠాకుర్ కో రకమన మాహే జయప్రసాద్ సుగంధ తల్లావే తిస్కో సిమృత పరమగత భావే జయప్రసాద్ బసే సుఖ మందర తసే ధ్యాయ సదా మన అందర జయప్రసాద్ గ్రహ సంగ సుఖ బసనా ఆడు పేర్ సిమరోద సరసనా జయప్రసాద్ రాంగరాస్ భోగ నానక సదా త్యయ్యే త్యామన జోగ జయప్రసాద్ పాఠ పటంబర హడామే తసే త్యాగత ప్రభావే జయప్రసాద్ సుఖ సే జయ సువై జయ మన ఆడు పేర్ తాక జస్ గావిజ్యాయ జయప్రసాద్ తుభ కౌ మానే ముఖ తాకో జరసన బఖానే జయప్రసాద్ తిరు రహిత ధర్మన సదా త్యాయ కేవల పార బ్రహ్మ ప్రభుజీ జప దర్గే మాన పావే నానక పత్ సేతి కర జావే జయప్రసాద్ ఆరోగ కంచన దేహి లిబలావత శ్రామ సనేహి జయప్రసాద్ తిర ఉల్లా రహత మన సుఖ పావే హర హర జస కహత జయప్రసాద్ తిర సగలి శిద్ర ఠాకే మన సరణి బర ఠాకుర ప్రభు తాగే జయప్రసాద్ తుజగో నా బహుచే మన సా సా సిమరో ప్రభు ఉచే జయప్రసాద్ పాయి దుర్లభ దే నానక తాకి భగత్ కరే హే జయప్రసాద్ ఆ పుఖన బహరి జయ మంత సిమరత కే ఆలస్ కి జయ జయప్రసాద్ అసభ హస్త సువారి మంత ప్రభు కో కబూనా బిసారి జయప్రసాద్ బాగ మిలక తనా రాఖ ప్రోహే ప్రభు పనే మనా జంతే ని మన బంత బనాయి ఊఠత బైఠ సత్ సే ధ్యాయ తిసే ధ్యాయ జో ఏక అలఖ ఇహా ఊహా నానక తేరి రఖ जय प्रसाद करे पुन बहुधान मनाठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कहाय जय प्रसाद सुने कर्णनाद जय प्रसाद वेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत भावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनो बिसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मर मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू भावे साज रे मन मेरे तो था शिवराज जय प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपाए जप सोए आप जपाए जपाए सो नाहु आप गा वाए सो हर गुण गाओ प्रभु गिर बाते हुए प्रकाश प्रभु दयाते कमल बेगास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मत उत्तम हुए सर्वनिधान प्रभ देरी माया पो कशुना के नुह लाया जित जित लाभो तित लगे हर नाथ नानक इनका कशुना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिन मंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साध के संग मुखुजल होत साध संग माल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सबोतन मेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उबर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी साध के संग अगोचर मिलाए साध के संग सदा प्रफुलाए साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नंगत मुंता वै साध संग अस्तित्व मन भावे साध के संग माया ते बिन साध संग नानक प्रभ सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कह संग महापनी साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना भींगा पैर साधक संग ना ही गो मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हों ताप साधक संग तजय सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आय साधक संग ना कबहू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लह साधु कह संग आजर सहय साधक संग बसे तान ऊंचा साधु कह संग महल पहुंचाए साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु गए कुर्बान साधक संग सब सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कह संग सो तन पावे जिस तंते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु कह संग पापलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नई कशकाल दर्शन भेट तुभोत निहाल साधक संग कलुकत हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग इह उह सुहेला साध संग बिछरत रमेला जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग ना बिरथा जावे
പാരബ്രഹ്മ സാദൃത ബസാനുദ്രായ സാധു സുന്ദരസായ സാധുക് സംഘ സുനു ഹർ നാവ് സാസംഗ് ഹർ കെ ഗുണ ഗാവ് സാധുക് സംഘ ന മന്ത്രേ ബിസ്രായ സാസംഗ് സർപ്പർ നിസ്വതരായ സാധുക് സംഘ ലഗേ ബ്ര മീഠാ സാധു കേസംഗ് ഖഡ്ഗീഠാ സാസംഗ് ഭയാഗാരി സാസംഗത് ഭൈ ഹമാരി സാധുക് സംഘ ബെട്ടെ സബ് രോഗ നാനക് സാധു ബെട്ടെ സംജോഗ സാധു കി മഹിമ വേദന ജാനേ ജേത്താ സുനേ തേത്താ ബഖയാനേ സാധുക്കി ഉപ്മാ തേ ഗുണ തേ ദൂര സാധുക്കി ഉപ്മാ രഹി പ്രപൂര സാധുക്കി ശോഭ കാ നാഹി അന്ത സാധുക്കി ശോഭ സദാ ബ്യന്ത സാധുക്കി ശോഭ ഊഷ്തേ ഉച്ചി സാധുക്കി ശോഭ മൂഷ്തേ മുച്ചി സാധുക്കി ശോഭ സാധ് ബനയായി നാനക് സാധ് പ്രഭേദ ന പായി സലോക മൻ സാച്ചാ മുഖ സാച്ചാ സോയേ അവർണ ബേഖ ഏകസ്ബിൻ ഗോയേ നാനകേ ലക്ഷണ ബ്രാഹ്മ ജ്ഞാനി ഹോയേ അഷ്ടപദി ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സദാ നൃളേപ ജയസേ ജലമയ കമൽ അലേപ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സദാ നൃദോഹ ജയസേ സൂര്യ സർവകോ സോഹ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ദൃശ്യമാ ജയസേ രാജരംഗോ ലാഗേ തുൽപവാന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ തീർജ ഏക ജ്യോ വസുധാ ഗൗ ഖോദ ഗൗ ചന്ദല്ലേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ഗുണാവ നാനക് ജോ പാവക സഹ സ്വഭാവ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി നിർമ്മലതേ നിർമ്മല ജയസേ മേൽന ലാഗേ ജല ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ക മനോയ പ്രകാ ജയസേ തരുപ്രയാകാശ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ക മിത്ര സത്ര സമാന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ക നായഭിമാൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഊഷ്തേ ഊചാമനപനായ സപ്തേ നീചാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സേജന ഭയേ നാനക് ജന പ്രഭ്യാവ കരേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സകല കിരീനാ തമരസ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ചീന്നാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കി സബുപര മയാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി തേ കശ പുരാണാ പയാ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സദാ സമദർശി ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കി ദൃഷ്ടമൃത ബർശി ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ബന്ധന്തേ മുക്ത ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കി നിർമ്മൽ ജുഗത ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ഭോജന ഗ്യാ നാനക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ബ്രഹ്മ ധ്യാന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഏകു പ്രയാസ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ നഹി വിനാശ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ഗരീബി സമാഹ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ബാർബുകാരോ മഹ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ നാഹി തന്ത ബ്രഹ്മജ്ഞാനിലെ താപത ബന്ധ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ക വയസ്സോ ഫല ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സുഫല ഫല ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സംഘ സകല ഉദാര നാനു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ജപ സകല സംസാര ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ഏകാരംഗ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ ബസ പ്രഭസംഗ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ നാമ ആധാർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ നാം പ്രവാർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സദാ സത് ജാഗത ബ്രഹ്മജ്ഞാനി അഹംബു ത്യാഗത ബ്രഹ്മജ്ഞാനി പരമാനന്ദ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ സദാ ആനന്ദ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി സുഖ സഹജ നിവാസ നാനം ബ്രഹ്മജ്ഞാനി കാ നഹി വിനാശ

को बल बल जाइए। ब्रह्मज्ञानी को खोजे में उसर नानक ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है। ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथया ना जाए अदा खेर। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीवन मरता। ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ब्रहात। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी। नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी सलोक उरतारे जो अंतर नाम सर्व में पिख भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दर्श पारुत्र रूप न वेख नेत्र सादगी टहल संसंहेत। करना सुने गाहू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर। मन की बास न मनते ठर इंद्री जित पंच दोखते रहत नानकूट मदे को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस सुप्रसन्न विषय की माया ते हुए पिन कर्म कर तो वह ने कर्म दिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बाशे केवल भक्त कीर्तन संग्राच है। मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आप दृढ़ अपने नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत भाव। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंत बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म। सा संग बाबा मिल खो वै तस भगवती की मत उत्तम हो वै भगवंत की टहल करे नित नीत मंत्र अरबे बिशन प्रीत। अर्गे चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है सुध है राम नाम सारस पीवा है।

गौनाम जो जो जपत सकी गए सा संग भावे जन गोय कर गर बंदर उतारे बस ब्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्वरोग का औखत नाम कल्याण मंगल गुण गाम काहू जुगत कितना पाइय धर्म

प्रेम रसचाव मंत्र अंतर एही स्वभाव नेत्रोपेख दर्शक होए मन भिक्षा साध चरण तोए भगत जना कै मंत्र रंग बिरला कऊ पावै संग एक बस दीजे करमया गुरप्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक्षांद दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदपुर कारण करतार भगत जनागे प्राण आधार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लाभे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनकराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वह भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत परिसो करनी सो बातरमंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सासंग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सारगुण निर्गुण निरंकार स्वन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकारे काशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तबैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्क शोक कहो किसे व्यापत तब हर्क शोक कहो किसे व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रह्म तमहो कहा कि शोभत ब्रह्म अपन खेला वर्तीजा नानक कर निहार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुगत कहो किसको घनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन आवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तराए तब गमन ने डर गमन कत डराए अपन चलताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछद लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ये चर्जा नानक अपन रूप आप ही परजा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीता छल क्षेत्र जगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावित किसे भूख हम द्रवतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाए तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे परवीनता वेद गदेव कह कहु चीन जब अपने आप उतारित सगन अब सबगन कहा विचार है ज्ञापनु जापन आप नेरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विषमन विषम रहे विषमाद नानक अपनी गत जानू आप जा शल अशेद अभे समाया उहां किसे व्यापत माया आप इस गुआ पे आदेश ते गुण का राही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तौन अचंत किस लागे चिंता जे अपने आप आप पतियारा तौन कथ कौन सुनने हारा बहु

नानक मन प्रकाश अष्टपदी शांत अत्र प्रभिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समेगरी एक सघाट माहे आनक रंग नाना दृष्टा है नामृत अमृत प्रभु का नाम देहि मैं इसका विश्राम स्वर्ण समाद अनत्य नाद कहना चाहिए अचल विस्माद तिन देखिया से आप दिखाए नानक जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कटकट व्याप रहया भगवंत तरनमय आकाश पयाल सब लोक पूर्ण व्रतपाल बंधन प्रबत है पार रब जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दे दिसे समाहे तिसते भिन्न नहीं को ठाऊ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख शशि अर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोलना गबहू डोला सर्व कला कर खेला खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धारयो स्वामी ओत बोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने सब वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी ये रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने कर्ण कराम नहार प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सा मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावित सलय मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिजन आप बुझाए सर्वभूता अवतारा सर्वनयन आपेखनहारा

समाए ऐसे हुए सो नाही बुरा उरा कह हो कि न कश करा आप भला कर तू तत नेकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साच ओत पोत अपन संगराज ताकि गदमिंद कहीं ना जाए दूसरो ऐसा सो जी पाए जिसका किया सब प्रभान गुरप्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लहे प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जगत।

संग अगन सागर तरह हर धन के परले हो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

बिगाड़ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभुतारी, नानक नबी खेप हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुरु नाम, जिस मन बसे सोत निदान। सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सबते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे आमन जान। हर तन खाट चले जन सोहे, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सा दृद नाम रिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे ताइक न चले नाल केव सचियार होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जिया हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई

निरंकार असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

प्रमाणीय है। समोंद साह सुल्तान गृहा से तीमाल तान कीड़ी तोलना होवनी जेत समन होना विसर है। अंत न

तारे गाभे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा

की स सुन गलाया काश की कीटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै थीस आखन जोर चुपै न जोर जोर न मंगन देर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर।

काम आप रूप अमीक अनुभूत देख पुरुख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरुख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनुपेख सर्व सर्व

त्रय परथिसे अदिसे अदृसे अकृसे भगवती शांत वह प्रसाद कहते के अछज देश है के अभिज भेस है के अगंज कर्म है के अपंज भरम है के अभिज लोक है के अदित शोक है के बतूत भरण है के विभूत कर्ण है के राजन प्रभा है के धर्म तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा भरण है के जगतं कृति है के शतरंग क्षत्रि है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपह अनुप है

हैं, खाल कायक हैं, विश्वम्पर हैं, करुणालय हैं, निरिप नायक हैं, सर्वपायक हैं, पहुपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं,

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखण कवशय करता।

जाय सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जीओ मलीन है कित संजम धोता तो जाय मन धो तो शब्द लागू हर से रह हो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय इह सहसा जाय जीह मैले बारह निर्मल बारह निर्मल जीह ता मैले तिनी जन्म जीवे हारिया

हे रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए। हे रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होर कितै जिचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस

प्रभागम सुनिया हर मंगल गाव सखी गृह मंदिर बनया हर गाव मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागे अपना बिर जापे अरहत बाणी

ठाकुर आया, नावे नू सब लोचदी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकिए जो हर लिख पाया, श्लोक महला पहला। दुए दीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बनजारे, खुले हट हुआ व्यापार जो पहुंचे सो चलन हार। धर्म दलाल पाए निशान, नानक नाम लाहा प्रवान। घर आए वजी बधाई सच नाम।

तेरी वडियाई। एते कूकर हों बेगाना पंकाए सुतान ताई, भगतीन नानक जे होएगा तां कसमे नाउ न जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, घटी तीर्थ नावै सब मेरे प्राण बसते, बौड़ जन मनावा मन बेदिया दयाल, छेती मेरी माही कौन जाने, पीर पराई हम नाही चिंत पराई, राग में गोचर लाके पर चिंता करो हमारी।

धन्यवाद। चरण कमल प्रभ हिरदे त्याय रोग गए सगले सुख पाए हिंदु गुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म जीवन प्रवान रहो अकात कथा अमृत प्रभ बानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल माला पंजवा सांत पाई गुर सतगुर पूरे सुख बजे बाजे अनहद तूरे राव ताप संपाता ताप पाप संताप विनाश हर सिमरता खिल बिख

दिन दिन छिजता बिकार करत आहोद फाही फाथा जाम कै जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला मह महाबिकम सागर अत भारी उदरो।

हे गुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। रंगद गुर ते अमरदास, रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है, जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया

धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी च शोभायमान सत्कार योग साध संगत जी सानू गुरु साहब की बख्शी दात फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग साध संगत जी, बड़ा खुशी का मौका है कि इस गुरुद्वारा साहिब फ्री माउंट विच मैनेजमेंट ने टाइम दे लिहाज नाल आनंद कारज की रसम पूरी की है। दास बॉम्बे का निवासी है ते रोमी सबरवाल जी का मैं मामा लगना हाँ। तो जिस तरह उन्होंने आदेश होया है, दास बच्चों नू सिर्फ एको ही गल कहना चाहता है, जेड़े बच्चे भी इतों तक पहुँच जाते हैं US में आके कारपोरेट कंपनी काम करते हैं, टॉप लेवल पर काम करते हैं, उन्होंने कोई कहने ते समझाण की लोड़ नहीं है। पर कुछ ये जे मंत्र होंदे ने जड़े जिंदगी बहुत कम आते ने। मैं बच्चों नू यही कहूँगा, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, नेगेटिव गल्लां बिल्कुल दिमाग विच ना लियाओ। एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, प्राइड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तो जरा बच के रहो। तो सब तो जरूरी चीज़ है पेशेंस रखो, सबर। टाइम दे लिहाज नाल सब चीज़ ठीक हो जाती है। किसी तरह के भी रिलेशन होन, वो टाइम पा के आपे ठीक हो जाते हैं। दोए परिवारों विच मेल जोल, इज्जत मान, सत्कार हमेशा बना के रखो। मिठा बोलो तो किसी नू कोई शिकायत का मौका ना दो। ये तुहान हमेशा जिंदगी कम आएगा। तो जदों भी किसी काम वास्ते बाहर जाओ, गुरु अगे अरदास करके निकलो, छोटी अरदास करो, वाहेगुरु का सहारा लेके चलो, तुहान जिंदगी हमेशा कामयाबी मिलेगी। मैं इस करके, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे ने सारे, अमेरिका सारी संगत पढ़ी लिखी है, तो ज़्यादा कुछ कहने की लोड़ नहीं है। इसे करके मैं दोए परिवारों नू लख लख वधाइयां इस आनंद कारज की देना हाँ। तो नाले जिस तरह आनंद कारज संपूर्ण किया गया है वो काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा साहब की मैनेजिंग कमेटी नू भी मैं तहे दिल तो धन्यवादी हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जे किसे क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंगे ले अक्के कोई क्यों जवाए एव हर तन जोर किते किसे नाल ना जाए वंडाया जिसनों सतगुर नाल हर सर डालाए तिसर तन की वंड हथ आवे जिसनों करते तुर लिख पाया इस सर तन का कोई सरीक नहीं किसे दे खत नहीं किसे के सीर बनना है रोल नहीं जे को हर तन की वकीली करे तिसका मुंह हर चो कुंडा विच काला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना चली महला तीजा जगत जलंधर तुम्हारे उभरे है तिते ले हो बार सतगुर सुख वे कालिया सचा सब विचार नानक कवर न सुजी हर बिन बक्सण हार महला तीजा होमे माया मोहनी दूजे लग गए जाए नाए मारी ना मरे नाए हटवे काए गुर के शब्द पर जालिए ता ए विचो जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारण शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वड्याई सतगुर दित्ती तुरो हुक्म बुझ निशान पुती पाती जावाई सकी अगो पिछो टोल डिठा लायन सबना का अभिमान जिते को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुरु नो मिल मने सो हलत पग सिजे जे खोवे सो फिरे पृष्ठ स्थान जन नान केवल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पोधी पित देख के सब आए पे सतगुर की पैरी लायन सबना क्यों मनो गुमान श्लोक महला पहला कोई वाहे कोलुणा है को पाए खलिहान नानक एव न जापी कोई खाए निदान महला पहला जिस मन वसिया तरिया सोए नान जो पावे सो होए पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया गुरपुरे मेहरवान परमपो मारिया काम क्रोध बिकराल दू सब हारिया अमृत नाम निधान कंठ उतारिया नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया श्लोक महला तीजा जिनी नाम सारिया कूड़े कैन कहन पंच चोर तिना कर मोहन होमे अंदर सन साकत मुठे दुर्मति हरस ना जणन जिनी अमृत परम लुटाया भिक्षो रचर चन दुष्टा से ती पिरड़ी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी दोनों ही परिवारों एक बारी बहुत बहुत वधाइयां सो आप संगतां नु बेनती है आप जी बड़े प्यार नाल जाके बाहर लंगर छको जी सतगुरां दा प्रकाश है इधर नु पेट करके ना खलोवो सो बेनती प्रवान करनी ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੇਠ ਨਾ ਕਰੀਏ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ
0: ਹੋ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਸ ਜਿਨਕੋ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਰਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਤਿਸ ਪੌੜੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਿਆ ਸੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਟ ਕਟ ਮੁਖ ਪਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਬ ਨਹਿ ਜਾਈ ਗਣੀਆਂ ਸਚ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਣੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੁਹਾਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਦੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰੀ ਕਿਉਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਜੂਰ ਮਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਕੂਰ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈਅਨ ਸੱਚੇ

मानो सब सुख नो निद ताके सहज सहज मानो सब सुख नो निद ताके सहज सहज जस बोले देव राव तब है मत जो सब मैं पेखे कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके लैनर जामन तो ले देव जय ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चो ले देव क्या कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीत की ओ ले देव बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्मों को गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना ज्ञान जन्मों को गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन ही ना राहो नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन से जीव समाना बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारिद देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी अस दशा जित कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रपूरण काम राहो जो तेरी शरणागता तिन्ना ही पार ऊंच नीच तम थे तेरे आलज संसार कर रविदास कथकथा बो काय करीजे जैसा तू तैसा तुई क्या उपमा दीजे बिलावल जे कुल साध बैस न होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए राहो ब्राह्मण बैस सूद अरखत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए होए पुनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए तन सुगाओ तन सुठाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिखोए पंडित सूर छत्रपत राजा भक्त बराबर और न कोए जैसे पुराण पात्र है जल समीपन रविदास जन्मे जग ओए वाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नृपकन्या के कारण एक पया पेखतारी कामारथी स्वारथी वाकी पैस सवारी तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे सिंह शरण कत जाइये जो जम्बु ग्रासे राहो एक बूंद जल कारने छात्रिक दुख पावे प्राण गे सागर मिले फुन काम न आवे प्राण जुथा के थिर नहीं कैसे बिरमावियो बूढ़ मुए नो का मिले खो खाए चढ़ावियो मैं नाई कुछ हो नहीं कुछ आए न मोरा अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा एक ओंकार सतनाम करता पुर निरपो निर्वैरा काल मूरत जुनी सैभंग गुर प्रसाद राग गौण चौप दे महला चौथा कर पहला जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सबके जो जीव वरते प्रभ कालिया किसे का एक तिल न गवाई हर तिस की आस की जे मन मेरे जो समय स्वामी रहे समाई मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजे साने फल आस बिरथी जाई राहो जो दिसे माया मोक टंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इन कह किच हाथ नहीं कहा करे ए बपरे इनका वाया कछ न वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छुड़ाई जे किच आस अवर करे परमित्री मत तू जाने तेरे किते कम आई ए आस परमित्री पाव दूजा है खिन में झूठ बिन सब जाई मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साजे की जो तेरा कालिया सत्थाए पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई किछ किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई जन नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृताई गौंड महला चौथा ऐसा हर से ये नित त्याये जो खिन में किलविक सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस की जे ता हर नैफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेविय सुखदाता सुखदाता स्वामी जिस सेविय सब पुख लहासा मेरे मन हर ऊपर की जय प्रवासा जय जाइये तै नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जन दासा रहो जे अपनी बिरता कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरता बहुत बहुत कढासा अपनी बिरता कहो हर अपने स्वामी पै जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरता अवरा पै कहिए अवरा पै कह मन लाज मरासा जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाई मिलासा जिस दिन उनका स्वाह को होए न आवे तिस दिन नेड़े को न टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद उपकरे सु दुख सुखासा जिसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति ओस रख न सकासा हर जप मंत गुरु उपदेश ले जापो तिन अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अंधे नाम जपो हर संत हो ए छुट्टन का साचा परवासा गौण महला चौथा
हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना जैसे सख्त सुर भोजलता गुर सस देखे लै जाए सब तपना मेरे मन अंदिन त्याय नाम हर जपना जहाँ कहा तुझ राखे सब ठाई सो ऐसा प्रभ से सदा तू अपना रहो जहाँ मैं सब निधान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछाण राम रस पावो ओ उत्तम संत प्यो बड बडना जिस जन की वड्याई हर आप धाई ओ कटे ना किसे की कठाई एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याय नित कर जुड़ना जन नानक को हर दानिक दी जय नित बसे हृदय हरे मोय चरना गुण महला चौथा जितने सा पात सा उमराव सिकदार चौधरी सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान हर अबनासी सदा थिरने चल तिस मेरे मन पज परवान मेरे मन नाम हरि पज सदा दीवान जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड अवर नाई किसे दा तान राहो जितने तनवंत कुलवंत में लखवंत दिसे मन मेरे सब बिंस जाए जो रंग कुसुम कचान हर सात निरंजन सदा से मन मेरे जित धर दरगे पावे तू मान ब्राह्मण खत्री सूद वैश्य चार वर्ण चार आश्रम है जो हर त्यावे सो प्रदान जो चंदन निकट वसे हृद बपड़ा त्यो सत्संगल मिल पतित परवान ओ सबते ऊंचा सबते सूचा जाके हृदय वस्या भगवान जन नानक तिसके चरण पखाले जो हर जन नीच जात सेवकान गुण महला चौथा हर अंतर जामी सबते वरते जे हर क्राए ते आको करिए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सबदु रख लिये मेरे मन हर जप हर नित पड़िए हर बिन को मार जीवाल न साके ता मेरे मन काय चिड़कड़िए राहो हर प्रपंच किया सब करते विच आपे अपनी जोत रहिए हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपुरे हर एक दिखाइए हर अंतर नाले बाहर नाले क्यों तिस पासो मन क्या चोरिए न कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पाइए जिस देव हर सब कुछ सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा तेये जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तुदले छड़िए गुण महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते जो त्रिखावंत बिनत नीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जान है मेरे मन अंतर की पीर राहो मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो पाई सो मेरा वीर मिल मिल सखी गुण खो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस बुझावो हर दर्शन शांत शरीर छक्का पहला राग गौण महला पंजवा चौप देखर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहो सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दुष्टो करता ओपत करता पढ़ल्यो करता व्यापत करता लिप्तो करता भक्तो करता बूझत करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक संतृष्टा गुण महला पंजवा फाक्यो मीन कपक्की न्याई तू उर्जरियो कुसंभाले पग थारे सास ले खेले तो उद्रे हर गुण गायले मन समझ छोड़ अवायले अपने रहन को ठोड़ न पावे काय पर कह जायले रहो जो मैगल इंद्री रस पेरियो तू लाग पर कुंटुम बायले जो पंखी कतर होए फिर बिछड़े थिर संग थर त्यायले जैसे मीन रसन साध बिंसियो ओ मूठो मूल लभाईले तू हो आ पंचवास वैरी के छूटे पर सर नायले हो कृपाल दीन दुख बंजन सब तुमरे जी जंतायले पावो दान सदा दर्स पेखा मिल नानक दास दसाईले रागोण महला पंजवा चौप देकर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए सो प्रभ तज मूड़े कज जाए पार ब्रह्म की लागियो सेव गुरते सुजन रंजन देव राहो जिनकी ये रंग अनेक प्रकार ओपत परल्यो निमख मजार जाकी गतमित कहीं न जाए सो प्रमन मेरे सदा त्याए आए न जावे निचल तनी ब्यंत गुना ताके के दगनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल घटा देवे आधार सतपुरख जाको है नाओ मिटे कोट अग्निमख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण दान नानक चीत गुण महला पंजवा नाम संकीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित की नी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इस गुर संग ध्यान रहो नाम मारे जी की रास नामो संगी जत का जात नामो ही मन लगा मीठा जलता समय नामो डीठा
ना मैं दरगे मुख उजले ना मैं सगले कुल उधरे नाम हमारे कारज सीध नाम संग ए मनुआ गीत ना मैं ही हम निरपयो पे ना मैं आमन जामन रहे गुरपुरे मेले गुणतास को नानक सुख सहज निवास गुण महला पंजवा निमाने को जो दे तो मां सगल भुखे को करता दान गर्भ खोर मैं राखन हार तिस ठाकुर को सो नमस्कार ऐसो प्रमन माहे त्याए कटव गर्जत कथे सहाय राहो रंक राहो जाके एक समान की ठस सगल पुराण बियो पोष न मसल तरे जो कुछ करे सो आपे करे जाका अंत न जानस कोए आपे आप निरंजन सोए आप कर आप निरंकार कट कट सब कट कट कट सब कट आधार नाम रंग भगत पे लाल जस करते संसदा निहाल नाम रंग जन रहे गाए नानक तिन जन लागे पाए गुण महला पंजवा जाके संग एहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिखोए नास जाके संग हृदय प्रगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाये जाके नीत राहो जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पौन से जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार कोटपति जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार शरण जिया का जाने पियो कृपा निदान निरंजन देओ पार ब्रह्म जपे कृपाल तब पेटे गुरसाद दयाल दिन रह नानक नाम त्याए सुख सहज आनंद हर नाए गोंड महला पंजवा गुर की मूरत मन में त्यान गुर के सद मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लय तारियो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारियो मत को परम पुलै संसार गुर बिन कोई न उतरस पार राहो पुले को गुर मार्ग पाया और त्याग हर भक्ति लाया जन्म रंग की त्रास मिटाई गुर पूरे की भी अंत वडाई गुर प्रसाद उरत कमल भी गास अंधकार में पिया प्रगास जिनकी आसो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करणय जोग गुर परमेश्वर है भी होग को नानक प्रभ ए जनाई बिन गुर मुक्त पाई है पाई गोंड महला पंजवा गुरु गुरु गुर कनमर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मेटे दात गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो परवान राहो गुर चणी जा कामन लागे दुख दर्द प्रंता का पागे गुर की सेवा पाए मान गुरु पर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की पूरन काल गुर के सेवक को दुख न व्यापे गुर का सेवक दिस जापे गुर की महिमा कथन जाए पार ब्रह्म गुर रहा समाए को नान जाके पूरे पाग गुर चणीता का मन लाग गुण महला पंजवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा देव अलख पे हो सर्व पूज चरण गुर से हो गुर वरनाई मैं थाओ अंधे जप्यो गुरु गुर नाओ राहो गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर बोहे तारे पपार गुर सेवा जमते छुटकार अंधकार में गुर मंत्र उजारा गुर के संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाइये वड पागी गुर की सेवा दुख न लागी गुर का सपन मेटे कोए गुर नानक नानक हर सोए गुण महला पंजवा राम राम शंकर व्यवहार राम राम राम प्राण आधार राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सब रे समाए संजना मिल बोलो राम सत्य निर्मल पूरन काम राहो राम राम तन संच भंडार राम राम राम कर आहार राम राम ईश्वर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिव लाए राम राम जब निर्बल पे जन्म जन्म के कलवे गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचर राम पे पार उतारे सत्य ऊच राम प्रगास निस्बास जप नानक दास गुण महला पंजवा उनको खसम की नीठा खारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का मैं न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सिर के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राहो जगत मास जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट ले साकत पद खोवे साजना पग मल मल तोवे पंच पूजने एक माए उत्पज खेल कर जगत वे आए तीन गुणा के संग रच ब्रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाए जिसके से तिन रखे हटाए को नानक भगत प्रसार बिन भक्ति सब होए खुआर गोण महला पंजवा कल कलेस मिटे हनाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जप जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे राहो गुर के चंद्र दे उतारे अगन सागर ते उतरे पारे
जन्म मरण सब मिटी पार प्रभु से लागी सह समाध थान थन अंतर एको स्वामी सगल कटाका अंतर जामी कर कृपा जाको मध्य आठ पैर प्रभु का नाव ले जाके अंतर वसे प्रभा ताके हृदय होय प्रकाश भक्त पाए हर कीर्तन करिए जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिये गोंड महल्ला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध स्तंते मार होय रही है सगल की रीना कट कट रमैया समय चीना इन विद्रम गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद राव आठ पैर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुहाओ ताजे विमान जान प्रभ संग सात प्रसाद हर स्यो मन रंग जिंतु किया तिसको जान आगे धर गए पावे मान मंत्र निर्मल होए निहार रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन रंगे साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जी वे प्रभ नाम गुण महल्ला पंजवा तूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार प्रभ की शरण गई सत्या गुरु सुप्रसन्न पे वटपाग आठ पैर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद राहो हर गुण रमत पे आनंद पार ब्रह्म पूरण बक्सांद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए करम तरम ए तत्त ज्ञान साध संग जपिए हर नाम सागर तर बोहित प्रभ चरण अंतर जमी प्रभ कारण करण

0: प्रसाद धारो उपर सुख वसै
1: परात मीन बंदा संग हसै
0: हे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुला
0: हे प्रसाद भोगे सब रसा।

0: कहा छूटे।
1: सहस कटे लको उठ धावे,
0: कीर्तन आवे माया पाछे पावे।
1: अनंग भोग विख्या के करे,
0: सिर पावे खप खप मरे।
1: बिना संतोख नहीं को राजे,
0: सुपर मनोरथ व्यर्थ सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए।

0: राष्ट्रपति
1: सतगुरु सिक्की करे ब्रजपाल
0: सेवा को गुरु सदा दयाल
1: सिक्की गुरु दुरमत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम ओचरे
1: सतगुरु सिक्के बंधन कटे
0: गुर का सिक बिगार ते हटे।

0: के ग्रह सेव जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सहे
0: आपस को कर कस ना जनावे
1: हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन बेचे सतगुर के पास।

सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशा जिस

हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करे प्रतपाला अचरज तेरी बड़ियाई नित नानक नाम त्याई सब जी तेरे दयाला

नाम शब्द सुवारण हारा ऐसे कह का जाना पै हो आपे करता आपे दे उगम सूर अचल संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर याद अंत तय लोहे आपे कराय कथा सुनाय सोए उभदाता मन तन दे उभदाता मन मुख सोए प्रभु।

के सुपाय करो बिनंते। एक शब्द राम नाम निरोतर गुरुदेव पत मती, लाज मरती मर गई कुंगट खोल चली, सत देवानी बाबरी सिरते संग टली।

बीस इक्कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चोर मरे देखे परमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आज चले पे आस निरासा चोर चोर चख माटी रल जाए काल ना चाम पै हर गुण गाय पाई नव निध हर कह लाए आपे दे वैसा सुभाए न्यानो बोले आपो बुझे ज्ञानो बोले आपे बुझे आपे समझे आपे सुझे गुरु का कह अंक समावे निर्मल सुचे सच पावे गुरु क्या सागर रत्नी ने तोल लाल पदार्थ साचा खोट गुर कया साकार कमावो गुर के करने का एताव नान गुर में साज समावो टूटे ने हो के बोले सही टूटे बांग दोहु देश गही टूट पर हित गए बुरबोल दुर्मत पर हर छाड़ी टोल टूटे घंट पड़े विचार गुरु शब्दी कर कार्य सार लाहा साथ न आवे तोटा त्रिपवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनवा राखो ठाए ठैक मुए अवगण पछताए ठाकुर एक सवाई नार बोते भेस करे कुड़ियार पार कर जाते ठाकुर हाई मैल बुलाई ठाक न पाई शब्द सुवारी सासु प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत है सकी फाटे चीर सिगार डापन तन सुख नहीं बिन डर बिन्टे डर डरप मोई कर अपने डिठी कंत सुजान डर राखिया गुर अपने निरपो ना बखान डूगर वास तिखा कणी जाप देखा नहीं दूर तिखा निवारी सौद मन अमृत पिया भरपूर दे दे अखा सब कोई दे पावै तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोलत टूडत हो फिरी टह टह पवन करार पारे टह तह टह पै होले निकसे पार अमरा जाति हर मिले तिनके हों बल जाओ तिनकी तूड़ा कुलिए संगत मेल मिलाओ।

उसारे सो ढाए से तस्मिन अवर ना कोय गुर प्रसादे तस संभला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गए ना को हुआ ना होगा आमण जान विगुचिय दुविधा व्यापय रोग ना व्यूण आदमी कलर कंद गिरंत विण

फिर फिर बाहे पास कौआ फिर पताना अब क्या हुआ पाता चोग चुगे नहीं बुझे सदगुण मिले तया के सूझे ज्यो मछली पाथी जम जाल विण गुर दाते मुक्त न पाल फिर आवे फिर जाए कर रंग रचे रह लिवलाए एव छूटे फिर पास नाम पाए बीरा बीरा कर रहे वीर पै बैराय वीर

रचना रात जन रचे जन श्रेयाकार गुरमुख बेअंत ते आइए अंत न पैरावार डाढ़ रूढ़ा हर जियो सोई तेस बिन राजा बना कोई डाढ़े गार तुम सुनो हर वसे मन माहे गुरप्रसाद दियर पाइये मत को परम पुलाहे सो

सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसै शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन धीर होमे खपे खपाए सी।

संपे को ईश्वर ते आई है, संपे पूर्व लिखे के पाई है, संपे कारण चाकर चोर, संपे साथ ना चाल होर।

0: जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा इन साण सुरत शब्द पव सागर तरिय नानक नाम कण रहे कांत एको मन वस्या सच असमय निरासो अगम गोचर देख दखाए नानक तंका दासो सुन स्वामी अरदास तुम्हारी पुछो सच बिचारो रोशना की जय उत्तर दीजे क्यों पाये गुरुद्वारो यो मन चलता सच कर बैसे नानक नाम आधारो आपे मेल मिलाए करता लागे सच प्यारो हटी बाटी रह निराले रुख बिरख दयाने कंद
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ गौड़ी सुखमणी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मटावो सिमरो जास बसम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद प्राण सिमरत सुदाखर की ने राम नाम एक आखर किन कायक जस जी बसावे ता की महिमा गणी न आवे कांखिए कै दर्श तुहारो नानकुन संग मुहे आधारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाउ प्रभु कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हराय प्रभु कै सिमरन दुश्मन टराय प्रभ सिमरत काश बिगुण न लागै प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै प्रभु कै सिमरन भाव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साधु कै संग सरबिन दान नान कर रंग प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिन से दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ सनानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होए सो पला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक तां के लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब केछ सुजै प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसे साधकी रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोताजे प्रभु को सिमरे से सर्ब के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा बनासी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभु को सिमरे से पारे उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन अणद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे अर नेरे संत कृपा ते अण दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु ना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह सुमानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरे से जन जिनको प्रमया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन भय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले अकारा हर सिमरन मैं

दुखिया हर का नाम जबते सुखिया ला करोरी बंधन परे हर का नाम जबते निस्तराय अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जबते अघावे जय मार गयो जाते अकेला तहर नाम संगोत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जबते पार पराही अनक बिघन जह आय सिंघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जून जन्मे।

वर्त नेम करे भव भाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, महादात पी सरथी वै, अगन वाय होमत पुराण, कनकस वैवर भूम दान, न्योली कर्म करे भवासन, जैन मार्ग संयमत साधन, निमख निमख कर शरीर कुटा, वे तो पियो में महल न जावे, हर के नाम सम सर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जबत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्व घमाना मन ते हुटै, सोच करै दिन से अर रात, मन की मैल ना तन ते जात,

च बहुत सियान पम का पहो ब्यापे अनक जतन कर त्रिसरणा त्रापे भीख अनेक गरणी बुझ कोट्यो पाव दरगे नहीं सुजय।

सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जास सुंदरसन बखानी सगल थान ते हो तुम थान नानक जय कट वसे हर नाम सलोक निर्गुण आरे आने सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया।

पातरं संघ सुहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीता बलुआ कह ग्रह भीतर बस अणद केल माया रंग रसा दृढ़ कर माने मणे प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो आपन कर कर्म।

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दियाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जानाय, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, और तारे जो अंतर नाम, सर्व मैं पिख भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारी, नानक हुआ परसा सगल निस्तारे, अष्टपदी

मन ते टराए। इंद्री जेता पंज दुख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस, बैसनु सो जस्यु परसो परसान, बिशन की माया ते होए भिन्न। कर्म करता होवे निह कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानक हो वैष्णु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनसे सगला परम, ओंकार पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की माति उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नित नीता, मन तने अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय वसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडता जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म सोधै, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश जाग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जूण न आवे।

काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावण आपे आप, सदा सदा नानक कर जाप। करन करावण कर

दूर सब हुंका सांग। भुजा देखे करे बबेक, आप है एक आप है अनेक, मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक सदी रिया समाए। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो आपन बिस्थार, सब का छुसकावे करने हार, उसते पिन कहो के छोए थान थनंतर एक सोए। अपने चलत आप करने हार।

संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत सांग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जून पाए, संत का दुखन त्रिद जून किरमाए। संतन का दुखन तृष्णा में जलाए,

दुखिया हर दीना। संत के निंदक को सर्व रोगा, संत के निंदक को सदा बिजोगा, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे ता सुखा पियो मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत

संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन में मराय, संत की दुख ना सुख ते टराय, संत का दुखी सुख ते टराय, संत की दुख ना सुख ते टराय, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मलाय। संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्मे मराय, संत की दुख ना सुख ते टराय, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मलाय। संत का दुखी अद बीज ते टूट, संत का दुखी किते काज ना पहुंच, संत के दुखी को दयान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है।

संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख ना त्रिटे कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब काट

कोथी आन। अपना खे लाभ करने हार दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसे आपन नाम देवट भागी, नानक जन से सलोक। तजो से आनप सुर जनाओ सिमरो हर हर राय का, सर मन रखो नानक तू परम पौ जाय। अष्टपदी

ज्यों मंदर को थम थमना त्यों गुर का शब्द मने अस थमना ज्यों पाखाण नाव चढ़त रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तेन संतन की बाछो तूर नानक की अर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पुरब लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार वरत्याग तू तिसे चितार जो काछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे आजान जान।

निर्मले करणी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जं के मन गुर की प्रतीता, ते जन अवेर प्रभ चीता, भगत भगत सुनिए ते लोहे, जं के हृदय को होए, सच करणी सच तां की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृढ़ साचा कार, सच वरते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक

सो परसा नष्ट पदी। अविनाशी ब्राह्मण में राख मानो की तुम प्रीत आते परे नाई किच को सर्व निरंतर एक सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म।

सोई होगा। हरण भरण जाका नेत्र फोरा, तिसका मंत्र ना जाने होर, अंदरूप मंगल सत जाके, सर्व थोक सुनिए घर तांकै। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसरा, गृहस्थ में भोगी, त्याग त्याग भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया।

अपनी मित गात जिसकी श्रेष्ठा सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते की मित न जाने की आ नानक ज्योत सुभावे सो वरती आ बिसमन बिसम भय बिसमा जिन बूझया तिस आया सुवाद प्रभु के रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ लयो दाते दो काटन हार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है भे सच नानकोसी भे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुण कारी शब्द सत सत

अपने जन काबर दा ढाके अपने सेवक की सरपा राखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई ना लाखे प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक उचते उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानु सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी कीरी में कल राखे भसम करे लस्कर कोट लाखे जिसका सासना काटते आप तांको राख देकर हाथ मानस जतन करतब भात तिसके करतब बिरथे जात मारे ना राख अवर ना कोई

नानक जिस भावै तिस लहे मलाय। जे बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन भवेक। काहू बोल ना पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई। ताकी कीमत किने ना पाई अनक भगत बंदन नित करै चरण कमल हृदय सिमराय। सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हो रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सोय उस पुरख का नाही।

अनुसार अष्टपदी संजना मिलकर विचार एक सिमर नाम उधार अवर पाप समीत बसारो चरण कमल रिद मय उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गौ नाम अरवाथ यो तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकास राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुण टुटतावे सो तन हर सेवा ते पावे जेसो को नित बाछे मीता सो सुख साधु संग प्रीता जिस सोभा को करे भली करणी सा सो बाबा जर की सरणी अन क्यों पावी रोग ना जाए रोग मिटे रब खुद लाए।

चाहे। एक सके गुण गाओ अनंता, मन तन जाप एक भगवंता, एको एक कर आप, पूर्ण पूर प्राभ्य आप, अनक विस्तार एक ते भय राज प्राजित गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोका। फिर

पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुवर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साधु कै संग, परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिव लाग। बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ हो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन मरण दुख भ्रम गया। इशपुन्नी सरदासा पूरी, रव रया सतसंग हजूरी। जिसका सातन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों